0: देखि आए डिवोर्स के छोड़कर गए हो तुम्हें माया करने मं भर तो मैं इतना गये जब यह समाज ने मैं के सोच मैं जाने का डिवोर्स मथि को अन्याय सहन न सक मैं डिवोर्स करे
1: मैं माफ कर सुनेर तुम्हें पुस्तक